0: saabas. Ehen ghanta tigane?
1: Noon. Hama baalali. Ruzam huri aharindike adis varabuda hinghamunu jayifata.
0: Yasmin engemwaane hinghamunu jayanaka. Yasmin Ruzama hedi abaduwes ulekan Ruzama ngenke. Ene kama alevwes nulayannu. Huriha kama engihure Yasmin ang ihawaran itubarukon ngen ene uloni. Yasmin ti ofihuge emme siniya ekaku. Yasmin ang amilla kankamog wednimmuge ikhtiyar di ofihuge muhummu etta kame Yasmin ang emma chaddu kollafe honnani. Itubarukurati no. Yasmin ang engemwaane Yasmin kuran jayekantataka kuran nu jayekantatta.
1: आहरे मर बेनुं रुजाम आहन यहाँ फंसे हैं नुं रुजामा सुनाए की गुले तंबाला का
0: यास्मिन ता सुनागे फैमिली मिहुं कातो ये वहाँ देख के
1: फैमिली मिहुं कातो का ये वहाँ के नुं इताक का एक हम सुनागे दोंबे कातो का बुने
0: यास्मिन ऐंगे ता तीहन यास्मिन कंतक कुरी मा ही नु कुरा इतक कमेंग ही गैफी है सुनागे फैमिली गातो बुने फन इम्माली की नोनन्नो की कुरं कायरा गातो वाह देखी ऐ अधि खुड़ा कुच्चे के यास्मिन तिदक का हवा अक्ता नगागने वारुगे सीकुने एकुच्चा गे नोहुनान का यास्मिन एंगम वाने नो असलुस मिफार ती कुरी कुरं नुवा वारु कमे
1: ती हुरी हवा के एम्मिन दक्कायरो की विकिं आहरे म्यूं हुरी हादो मैं म्यूं नहीं रुझान देखे लो भी वाती है रुझान गफियों के दुआ के सहारे मस्कते का फरवा कुड़ा है नुकुर मेनु कोमे मस्कते विसहारे कुरी कुरा ही तो आहरे के आमिल मस्कते कमोगे देखिए रुझान के कोमे कामिया भी एक आहरे यही तेरे फवाने आहरे चामिले फवाने केवे रुझान एक गबूल नुकुरने
0: Bala gabul kurati num masek katu ke ena Yasmin ang eha barang ei tubaru kurani Yasmin ang khial hodani
1: nukure itu baru kurana ma ehin kiriya kame faira ahin gea phone wa nula nenu
0: Bala Yasmin gabul kurani ei wara kudu kudu kame ugatu kata eh Yasmin ang ei kudu kama kavias ei bodu kame ke ekamu sabu khaira ruzam deke inga mano jai इतुरो मस्सल साइक तेरे अवार्ड नज़र होना मा
1: रंगल वाह केती बुने ठीक अंगारे स्काबोल कुरा साइफ देंगे ना आरे हाँ दानी आरे वारा बोड़ा ऑफिस में तिंग हाँ दाम बे मैं हुरी हाँ तो आरे उलुं ऑफिस है
0: यास्मिन यास्मिन ना कुशल कुरा उनो कं गबूल करो नहीं मस हर वारंग उफावेच्छे देंगे कुत की यास्मिन रुझामा बदल करूं बीनो
1: आन नकर नुखेरे ने वारा पीरोगने रुझाम दुआ के सहन नकर माफ़ इन नुकुराने
0: नुवान रुझामा की वारंग ही त्रि मिहे यास्मिन अले वाहक धक्का दब इंगिता ने नुवा कुते आहरें हम गैमोस यास्मिन अलुं ऑफी हूं देखें बीनो
1: एकम
0: रंगलो वाने हिब्बर करे रुझामा अले वाह दक्का दबे मशक ही वनी हम रंगलो वाने हैं ने ओके गुड लक इंगे
1: थैंक यू सर
2: पापा पापा दरवाजा फटा
3: नू किन भी दरवाजे पर थिंटी बुने
2: मामा ने तेरे पापा मामी सोनी दो
3: तेरा बुना भी था।
2: बप्पा बदस खैरा गाचु बुना नहीं तेरा कशनो। खैरा आएंगे बप्पा मामा मिस्वा नहीं कं। ने बप्पा बुने मामा गातो अवांगन ना शे।
3: बप्पा वारा बड़ा मामा मतिंगे बमिस्वे।
2: खैरा बस वारा बड़ा मिस्वे। गाजे मामा करना। बप्पा के कुन तो मामा फनवे।
3: मामा बुने था दरफलो गातो अन्ना ना में।
2: मामा बुने अन्ना नम। खैरा तक वारा लोबे वेस वस बुने।
3: तेरफल मामा ते के वारा लोबे दो।
2: वारा लोबे। खैरा हाँ दो फावे। खैरा मामा स खैरा बप्पा स खैरा तक वारा लोबे वाते। बप्पा एक अम्हिंग एक अम्हाकुआ सिंगाबल स्विट्जरलैंड डा। मामा

0: बाहर में गे जब वो सलाम करे अमिंदा बरकात है ओजोन फटा दा माय करे
1: दुनिया का वादिरों दे में हंट मट्ट का ओजोन आय अहमद तक तक याद करोगा
0: ओजोन फटा दा नेतिजनम राल ने केक का वीडियो में के इस पदा

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदर कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मिंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे ही राज्य चाडू
3: इस्लामी तारखले तेरे कुरेवे दातुरु
2: मुकद्दस तंतना इस्लामी ताहुसी बिना कुरुंगा मुहिम मुदावरे गदा कुफावा समामवी तंतन के वाहकता
4: कमुंग बल्कीस के अस्तु रसकं उती कोंग सरहद देक्या तो देनिकन्नं आर्कियोलोजिस्टुं वरबुडु समाकम
3: रत्त बिना कुरी गोता इल्मं हिवर्दी पिंताव का इल्मं हित्त फुरादी गई
2: कुरी पोशी
5: कोमे हो मदो है के हेंदुन अग्गडी तेरी हूं
2: रिपीट अंगार दुह के बिंदुर एके जहर आदि बुद्ध दुह के रे अग्गड़ तेरी हूं एंगा सतरस्ते के साल इस न्यूट किलो हर्ट्स मीडियम वेव आदि 98 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
5: इंतजार कर दो ना
6: कोमे उम्र का
7: कोमे फंतिया का
6: कोमे गिनतिया का दिवही राज्य के अड़ू इंहा सतरसे के साल इस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव
7: अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
8: गड़िंग में तो मंगल वे देगड़ी थीरीस मिनट असोम ते के दोनी दिवही राज्य गाड़ो
9: मुझ तमा